पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले साँझ 7 बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले रात को 8 बजे।